0: है सुना रही आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की घोषणा की गई है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रूपये का भुगतान किया जाएगा।
1: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस, 78 दिनों का बोनस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2,009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चल रहा है। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को भी स्वीकृति दी है।
1: दूसरा बड़ा फैसला आज लिया गया है, वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस हैं सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीज का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक के आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रूपये और 80 वर्ष तथा उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रूपये होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दे दी है।
1: भारत जिस तेजी से ग्रो कर रहा है, इसमें ग्रोथ कैपिटल की बहुत रिक्वायरमेंट, ऐसी हमारे पास कई संस्थाएं चाहिए जो कि ग्रोथ कैपिटल को ला सके, समय इसको सपोर्ट कर सके, इसीलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक उसमें एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर सेलेक्ट किया गया है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर की मदद से नया कैपिटल इन्फ्यूज किया जाएगा और भारत में फाइनेंशियल सर्विसेज में लार्जेस्ट FDI आने का माध्यम इस निर्णय से बना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सभ्यतागत यात्रा सदियों से सांस्कृतिक आदान प्रदान और ज्ञान के साझा प्रयासों से समृद्ध हुई है। भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंधों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने एक संदेश में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भिक्षुओं, विद्वानों, व्यापारियों और यात्रियों ने भूमि और समुद्री मार्गों के जरिए भारतीय विचारों को दुनिया भर में पहुंचाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और आसियान देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए संयुक्त शोध, तकनीकी साझेदारी और समुद्री सुरक्षा पर मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा है। नई दिल्ली में आसियान भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम में उन्होंने कहा कि आतंकवाद, साइबर अपराध, समुद्री चुनौतियों और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सभी देशों को साथ आना होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और जन समुदाय आदान प्रदान क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों मंत्रियों ने आज नई दिल्ली में मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया है। महाराष्ट्र के 358 तालुकों में से 305 को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दीपावली से पहले किसानों को 5,000 रूपये की प्रारंभिक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 252 अंक गिरकर 72,782 पर पहुंच गया। निफ्टी 99 अंक कम होकर 22,623 पर आया। आनंद कुमार विल कुमार ने पराग्वे में स्केटिंग खेलों में 1000 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। आनंद कुमार प्रतियोगिता में अब तक 2 पदक जीत चुके हैं। हैदराबाद में भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में शुक्रवार तक ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मुख्याः वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलस्य महती स्वीकृतिः। 11.40 लक्ष परिमितेभ्यः रेल कर्मचारिभ्यः 78 दिनानां पारितोषिकम् अनुमोदितम्। राष्ट्रिय सामाजिक सहायता कार्यक्रमः च 31 वर्षपर्यन्तं विस्तारितः। वित्तीय क्षेत्रे मन्त्रिमण्डलस्य ऐतिहासिकः निर्णयः। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमानां नूतन उद्यमानां च संवर्धनाय IDBI बैंक संस्थायाः रणनीतिक पुनर्संरचनायै मन्त्रिमण्डलस्य स्वीकृतिः। जागतिक ज्ञान सांस्कृतिक आदान प्रदानेषु भारतस्य ऐतिहासिकम् अवदानम् अद्य प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सप्रश्रयं समुद्घोषितम्। भारत कैनेडा देशयोः रणनीतिक सहभागितायाः नूतनः अभ्युदयः। वाणिज्य ऊर्जा रक्षा शिक्षा क्षेत्रेषु परस्पर सहयोगस्य दृढीकरणाय संकल्पः। अपि च हैदराबाद नगरे अद्य भारत वेस्टइंडीज दलयोः 4th T20 अन्ताराष्ट्रिय सम्मुखीकरणं भविष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। उत्कृष्ट प्रदर्शनाय 44,000+ रेल कर्मचारिणः 78 दिनानां वेतनातुल्यम् उत्पादकता सम्बद्ध पारितोषिकं लप्स्यन्ते। मन्त्रिमण्डलस्य निर्णयं श्रावयता अश्विनी वैष्णवेन प्रोदीरितं यत् पर्वणः प्राक् दीयमानम् एतत् पारितोषिकं कर्मचारिणां कार्यप्रेरणाम् उत्कर्षयिष्यन्ति।
1: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस 78 दिनों का बोनस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2,009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
0: केंद्रीय मन्त्रिमण्डलेन राष्ट्रिय सामाजिक सहायता कार्यक्रमस्य आगामि पञ्चवर्षाणां कृते 28,43,50 कोटिरूप्यकाणां व्ययेन विस्तारः स्वीकृतः। अनेन दिव्याङ्गजन पेन्शन् राशिः वर्धिता। दिव्याङ्गतायाः मानदण्डसीमा 80% न्यूनीकृत्य 40% यावत् विहिता। तथा हि न्यूनतम वयः सीमा जन्मतः एव निर्धारिता इति सूचना मंत्रिणा अश्विनी वैष्णवेन समाख्यातम्।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांगजन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलस्य महती स्वीकृतिः। IDBI बैंक संस्थायाः रणनीतिक पुनर्संरचना च निर्णीता। मन्त्रिमण्डलस्य उपवेशनानन्तरं नवदेहल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन समाख्यातम् यत् देशस्य सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमानां तथा नूतन औद्योगिक उपक्रमाणां समभ्युदये अस्याः संस्थायाः महती भूमिका वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्रमोदिना अद्य प्रतिपादितं यत् देशस्य सभ्यता यात्रा शतकानां सांस्कृतिक विनिमयेन ज्ञान सहभाजनस्य च परम्परया निरूपिता वर्तते। विश्वे भारतस्य सांस्कृतिक सम्पर्काणामुपरि आयोजितायाः अन्ताराष्ट्रिय संगोष्ठ्याः उद्घाटनसत्रे प्रेषिते सन्देशे प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् नालन्दा सदृशैः प्राचीन ज्ञान केन्द्रैः भारतस्य एशिया महाद्वीपस्य च अन्य भागानां मध्ये ज्ञान विनिमयः सुदृढः जातः। तेन सविशेषं प्रतिपादितं यत् सन्यासिनः विद्वांसः वणिजः पर्यटकाश्च स्थल जल मार्गैः भारतीय विचारान् दर्शनं च सम्पूर्णे विश्वे प्रसृतवन्तः। प्रधानमन्त्रिणः अयं सन्देशः संस्कृति सचिवेन विवेक अग्रवालेन सम्मेलने पठितः। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
2: अनुक्षणम् अद्यतन सूचनाभिः परिपूर्णाः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अमन यादव। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने की स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि ₹375 और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए ₹625 होगी।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांगजन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की। श्री वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम ₹17,951 का भुगतान किया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कनाडा के साथ एक ऐसी रचनात्मक और भविष्योन्मुखी राजनीतिक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिसे दोनों देशों के लोगों को फायदा हो। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आवागमन में भारत कनाडा संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत की। इसके अलावा विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कनाडा की विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। कनाडा की विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार वार्ताओं को आगे बढ़ाने से लेकर ऊर्जा, नवाचार और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने तक भारत और कनाडा की प्रगति से वे उत्साहित हैं। भारत ने आज सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणजीत जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले पूरी तरह अस्वीकार्य हैं और तुरंत बंद होने चाहिए। श्री जायसवाल ने बताया कि सऊदी अरब में भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के साथ नियमित संपर्क में है और परामर्श भी जारी किया गया है। सरकार ने भारत मॉरिशस के दोहरे कराधान निवारण समझौते में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसमें कर चोरी और कर से बचने के लिए संधि प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल किया गया है। संशोधित समझौते के अंतर्गत यदि किसी लेन देन या व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कर संधि लाभों को प्राप्त करना पाया जाता है तो ऐसे लाभों को अस्वीकार किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिश्वतखोरी के एक मामले में म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक अनिल कुमार और 2 अन्य निजी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। CBI ने पुणे में आरोपी अधिकारी के ठिकाने से 1,73,00,000 रुपए बरामद किए हैं। इसके अलावा मैसूरु, बेंगलुरु और दिल्ली में आरोपियों के ठिकानों पर तलाशी ली गई। इस दौरान करीब 50,00,000 रुपए नकद और मामले से जुड़े आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। CBI ने कहा है कि मामले की आगे का जांच जारी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत किसानों की आजीविका में सुधार करते हुए वैश्विक खाद्य भंडार बनने की ओर अग्रसर है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री चौहान ने बताया कि 2014 से 2024 के बीच खाद्य उत्पादन में 49% की वृद्धि के साथ भारतीय कृषि ने कमी के दौर से निकलकर आत्मनिर्भरता और रिकॉर्ड उत्पादन की ओर कदम बढ़ाया है और दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है।

में महिलाओं के योगदान को सम्मान देने के लिए कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर महिला किसान दिवस मनाया जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार महिलाएं बुआई, रुपाई, फसल कटाई, पशुपालन और बीज संरक्षण जैसे कई कामों में अहम भूमिका निभाती है। मौसम विभाग ने कल हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।